पहला जेकर सुतमनी सब ते सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाणियां के जिया बाज न कोए पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखी है।

और जिससे वे सुखपाई है सो साहिब सदा संभाली है। जित किता पाई अपना सा काल बुरे क्यों काली है, मंदा मोल ना की चाहिए लम्बी नजर निहाली है। जो साहिब ना नहारी है तो वह पासा टाली है, किस लाहे ऊपर काली है, किस लाहे ऊपर काली है।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रीख भीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत गावह कपलाद आदि जोगेश्वर

तेरी वडियाई, बड़ा तेरा दरबार, सचा तुद तख्त सिरशाह, पातशाह निहचल चौर छत, पौड़ी बढ़ियो बड़ा भार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक जप करतबा, जी अंत जियो सबक जान ला, सबक तेरे वास तेरा घर पला, तेरे कारण अंत बधाई तुद घर, मन मंदा तेरे अपने आप चार, सर्व कला भरपूर दे सजत कथा।

रंग परंग नेक न जापन करते बा जिया दर्जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वस तेरा कर पला तेरे।

पौड़ी वटी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सबके जानला, सब किस तेरे बस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद।

0: ला सब किश तेरे वस तेरा कर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलो
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत देव

बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराई गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया।

कान हर बूंद बसरो मावल कुसम बसंत गनंत नायावै राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पालो नह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै नानक सावन जे वसै चहो ओ माहा होए नागा मिर्गा मछियां रसियां कर तन होए नानक सावन जे वसै चहो वेछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखहु राखनहार दयाला नानक करके गोले फरीदा बार पराया बैसना साई मुझे न दे जे तू एवै रखसी जियो शरीर होले एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहु सरनाई अंदर सच्चा नेहु लाया प्रीतम आपना तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाय दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पाते सा हो सिर साहां दा जिस पास बैठया सो ही है सबना दा वेसा सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दा साहु जिस पास बैठया सो ही है सबना दा वेसाहु सत नाम

हाथ दे रख करे अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब साध मेहरवान बंद पाया मेरा सतगुर पूरा होई सर्व कल्याण।

हमें अब गुण परी एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सोत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलांत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई।

उपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेल पंचह नहीं सहसा चुकाया सिकदारह नह पतियाया उमरावह आगे चेरा मेले राजन राम निबेरा मेले पंचह नहीं सहसा चुकाया सिकदारह नह पतियाया उमरावह आगे चेरा

0: सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे सराजै की तुनी श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुर अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा।

लख सुरतन संग्राम रणमय छुटै प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करतै करना किया लिखिया आवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा।

बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत, जोत मह जाता कलकला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिनकी ती सो पार।

कालुख खान उतार, तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार। ओए जो सेवा शब्द सार।

गुण नाकी अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लग एक तम

अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमधि नूर अर सोह कुर सोह चटिया तद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राग गोंड बाणी रविदास जीओ की सतगुर प्रसाद

हमरा पित माता मुकंद मुकंद जपहु संसार भेन मुकंद तान हो आहार सोई मुकंद मुकत का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत मुकंद मरत मुकंद ताके सेवक का सदा आनंद रहो मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं सेव मुकंद कर वैराग्य कंद दुर्बल तन लदी

0: तागना टूट सपूत महला पहला।
1: तागना इंद्री तागना नारी पलके थुक पैन दाड़ी तागना पैरी तागना हाथी तागना जेवा तागना अखी वे तगा आपे वत्ता वड़ता गे अवरा कत्ता ले।